0: क्या हुआ बे, ऐसा क्यों देख रहे? स्टार्टिंग में साइबर कैफे जाते थे तो लिखते थे कि क्रेजी डांस, बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता था मेरे को कि लाइक पीपल आर जस्ट लाइक फ्लाइंग लाइक यू नो इन द एयर, दे आर लाइक ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एंड लैंडिंग ऑन देयर फीट. वीडियो के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ मेरा, मैंने सब डॉक्यूमेंट्री में बोला ये चीज, वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस किया.
1: हाँ, वीडियो में ही देखता था वो. हाँ. वीडियो में देख देख के ही किया है सब.
0: वो रिसर्च किया मैंने बहुत ऐसा कि कहाँ से आता है, लाइक क्या टाइप के, लाइक यू नो क्या एनवायरमेंट क्या रहता है, बैटल क्या होती है. और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था ब्रो, लिटरली मैं दिन रात एक करता था.
1: कॉलेज जाता नहीं था. कहाँ जाता, घर से बैग लेके जाता, कॉलेज जाता ही नहीं है
0: ब्रो. मैं एक एक माले पे चढ़ के बैक फ्लिप मार देता था.
1: हाँ
0: लिटरली. She has never seen me dancing. Only time that she saw me dancing was 2019.
2: This is Red Bull BC One, the most prestigious B-boy, B-girl stage on the planet. You know the flying
0: machine. That was the first time when ever any Indian stepped on the world finals. मेरे लिए भी बहुत अलग प्रेशर था कि भाई मेरी मम्मी देख रही है. हाँ इतने सारे लोग
1: सब लोग बोलते थे ना अभी, मतलब फ्लैग मशीन आ रहेगा अभी, तो मैं आजू बाजू में सब बैठ, मैं मेरा बेटा है, बोला आपका बेटा है, मैं बोली हाँ मेरा बेटा है, बोले ये जो है ना इधर का स्टार तुम्हारा बेटा है, तुम्हारे बेटे की वजह से ये सब हो रहा है.
0: मेरे को लगता है कि वो गिफ्टेड था मैं, कि वो ब्रेकिंग मेरे को मिला और एक्चुअली मैं ऐसा मीडियम बन गया कि और उसको अलग लेवल पे लेके यार अपने कंट्री में.
3: Of the Red Bull BC One Cypher, India. The top 60 B-boys and 8 B-girls will battle for a spot at the Red Bull BC One World Finals. Now, who takes the title home tonight? Let's find out. Representing Mumbai Flying Machine, Batman representing Bengaluru, Tornado representing the city of Mumbai. Up next up, the B-girls are clear representatives of J.P.

मेरा नाम जो है ग्लिब, म्यूजिक कम करो। जैसे ग्लिब है वो डिफाइन करता है स्मूथ स्लिपरी मूव्स, तो उसमें तीन चार मूव्स हैं। तो लाइक पहले मैं उसमें नमस्ते करती हूँ जब इंटरनेशनल जाती हूँ, नमस्ते एंड दिस पूरा ये चिल्ला लो। जैसे मैं स्लिपरी बताया तो मैंने खुद धक्का देके और घूमना ऐसा कुछ करके, देन दीज मूवमेंट्स, ये सब जो मेरे वो दिखाता है लाइक ये सब चीज़ें हो गई। मुझे यही पता था कि आप हर चीज हंसोगे। क्योंकि नाम इन्होंने दिया ही चिढ़ा देते मुझे बहुत ज्यादा। दीज थिंग्स ऑल्सो जो मैं करती हूँ बैटल में, मैं अपने आप को मानती हूँ कि दो पर्सन है मेरे अंदर, एक सिमरन है और एक ग्लिब है। तो ग्लिब के दो मतलब है, अगर सिमरन का देखा जाए तो बहुत टॉकेटिव पर्सन जो कि मैं जनरली हूँ, और अगर ग्लिप का देखा जाए तो मेरे मूव्स डिफाइन करता है स्लिपरी स्लीक बहुत स्मूथ।

0: हंगर लगे नहीं, जीतना है जीतना है यार, इस साल जीतना है तो इंजरी तो कुछ नहीं करना है। 2023 से आप समझ सकते हो कि मेरी लाइफ चेंज हुई है रेडबुल से, क्योंकि मेरे पास एक टैग लग गया कि रेडबुल DC1 विनर है यार ये।
1: रेडबुल जीतना था कि इंटरनेशनल जाना था, तो रेडबुल ही एक ऑप्शन था। अगर वो जीतेंगे तो इंटरनेशनल जा सकते हो, नहीं तो नहीं।

0: पहले तो जब देखा मैंने तो मेरे को पता ही नहीं था ये ब्रेकिंग है, क्योंकि हम लोग तो मतलब स्टंट काउंट करते हैं, एज अ स्टंट काउंट करते थे वो टाइम पे, वो एरा में जिसको आता था ब्रेकिंग उसका इज्जत करते थे लोग एरिया वाले। इज्जत मतलब अगर वो कोई बर्थडे में जा रहा है तो उसके लिए चेयर्स आ रहे, कोल्ड ड्रिंक्स आ रहा, केक आ रहा, सब ऑटोमेटिक चल के आ रहा है। तो मैं बोला मेरे को भी चाहिए इज्जत भाई, मतलब समझेगा। फिर मैं नेक्स्ट डे जाके उन लोग अप्रोच किया कि मेरे को भी करने का, तो वो लोग ने मार के भगा दिया, नहीं सिखाएंगे बोले। एक सेलिब्रिटी टाइप ऐसा घूम रहा हो, ऐसा कोई रैंडम आके बोलेगा मेरे को सिखाएगा क्या एक्टिंग, नहीं हो सकता ना, तो ऐसा भगा दिया मार के। फिर मैं उन लोग को 2 महीना फॉलो किया दूर से, ऐसा 100 मीटर से ऐसा देख रहता था क्या क्या कर रहे, फिर अपने साइड जाके प्रैक्टिस करता था। एक टाइम पे 150-200 बी बॉय एक एरिया में, और अभी कोई है ही नहीं क्योंकि वो एरिया थोड़ा ऐसा था, डेडली था, तो सब लोग कंटिन्यू नहीं कर पाए, लोगों को जॉब करना था, कुछ लोग जेल में थे, कुछ लोग भाग रहे थे पुलिस से। तो गनी एग्जाम्पल, शफी, वसीम भाई, लोग सब लोग सेलिब्रिटी थे हम लोग के लिए। मतलब अगर वो लोग हम लोग के प्रैक्टिस प्लेस पे आ गए तो कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा, चाहे 3 घंटा 4 घंटा सिर्फ देखेंगे सब। तो बस उन लोग के वजह से ही हम लोग को इतना हिप हॉप मालूम है।
1: मैं उसको बोला कि तूने एक चीज़ बहुत अच्छी बोला रहे, मतलब कि वसीम भाई ये लोग बाकी लोग हमारे लिए सेलिब्रिटीज थे, अब भी मैं दूध लेके आया इसके इसके घर पे।
0: टाइम बदलता है भाई।
2: फर्स्ट नॉलेज, उसके बाद में दूसरा कुछ।
1: थोड़ा मजाक मस्ती है, मैं थोड़ी खींच देते हैं मेरी, क्योंकि एज भी हो रही है मेरी। अगर मुझे कुछ नहीं होता है करने से, बोले भाई बस कर दो, हो गया आप। मेरा नाम वसीम है और मैं रॉकफिश शुरू से रिप्रेजेंट करता हूँ, और मेरी उम्र है 43 ईयर्स ओल्ड, और मैं वन ऑफ द फर्स्ट बी बॉय में से एक इंडिया में आता हूँ।
2: प्रैक्टिस के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, मतलब जगह नहीं मिल रही बिल्कुल भी।
1: यहाँ पे हम लोग ने अपना फ्लोर बनाया था, हम लोग हमारा खुद के पैसे से ये चीज़ बनवाई थी।
2: पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा फिशर एरिया है। प्रैक्टिस करके घर पे जाते थे, हम लोग की बॉडी से जो स्मेल आती थी फिश की, हर कोई गालियाँ सुनता था घर पर। 2011-12 बहुत अच्छा टाइम था, वो टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग की लड़ाइयाँ होती थी आर्टिस्ट लोग से, बीबोस लोग से, बैटल्स के अंदर हम लोग का झगड़ा हो जाता था।
3: नहीं नहीं नहीं भाई, ये सब नहीं कर सकते भाई, ये सब नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, हिप हॉप की वजह से भाई, हिप हॉप हम लोग ये सब नहीं सिखाता।
4: हो जाता है भाई, सीन रियल हो जाता है, लाइक यू नो बैटल थोड़ा इंटेंस हो जाता है कि यार।
2: एटीट्यूड क्या होता है, सामने वाला इतना डर जाए कि अपनी चीजें भूल जाए, एक एटीट्यूड होता है। नहीं, बाकी मैं ही हूँ खाली यहाँ पे।

0: ass shaking like what?
1: कपड़ों से तो बहुत वो है इसको रोज जाना
2: क्योंकि हमारा ब्रेकिंग है फैशन के बारे में मम्मी मैंने मम्मी का शादी की ड्रेस को पहना तो मम्मी कितनी खुश होकर देखती रहती है उसको पूरे दिन जितना ब्रेकिंग को नहीं देखती उतना इन सब चीजों को देखती
1: शादी की बरी
2: तो मैं जैसे बता रही हूँ ना मम्मी आज 1 लाख लोग देख ली 1 लाख लोगों ने देख ली क्योंकि इनके लिए 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है 1 लाख लोगों ने वीडियो देखी फिर मैं बोलूँ मम्मी 1 मिलियन हो इतना इतना चला गया उतना चला गया तो मम्मी बहुत खुश होती थी सबसे ज्यादा जो मम्मी ने फेस किया है वो यही कि मेरे को

0: मम्मी को फैमिली से पूरे आसपास के लोगों से बहुत सुनने को मिला है मेरे बारे में, ये आपको पक्का आपका नाम डूबेगी, कहीं चल जाएगी, घर छोड़ देगी।
1: मैंने तो बैठना ही छोड़ दिया फिर लोगों को।
0: मम्मी रोती थी मेरी बैठ के, क्योंकि मम्मी मुझसे तो लड़ नहीं सकती, क्योंकि मैं उनको बता देती मम्मी कुछ भी गलत नहीं करी, और मम्मी रोती थी कि मैं क्या करूं, मैं सुन नहीं सकती अपने बच्चों के लिए इतना गंदा ये वो।
1: ज्यादा लड़कियां तो करती नहीं, लड़के ज्यादा वो है तो सुनने को बहुत मिलता था वो तो, लेकिन मैंने सुना सबकी।
0: जो लोकल बैटल होती थी उसमें साइफर में ज्यादा लोग होते नहीं थे, 4-5 लोग खड़े होते थे, तो मम्मी बोलती थी कि 10 लोगों के बीच में नाच के आ गई और पैसा इतना खर्च करके आ गई, तो तू बड़ी बड़ी बैटल से
1: छोटी छोटी बैटलें सब अटेंड करती थी।
2: This with the GG rap karu HR51 gang mera needy Friday se freaky FRIENDS mein main Phoebe let me be be habibi.
3: There were a lot of jams on small scale, people used to like you know cypher a lot, people used to like exchange a lot and it was very raw. So breaking के बहुत सारे layers हैं। There's footwork, there's top rock, there's power moves, there is freeze. These are the core things जिसमें बाकी सारी चीज fit in होती है।
2: Life ने दिया था test में better, stronger, harder, faster.

काफी मुझे ऐसा फील हुआ कि कंपटीशन था मेरा और मेरे को काफी भारी मूव करने पड़े। स्टार्टिंग में मेरे को हार्ड लगा था, देन मेरे को पता है मैं कौन, मुझे पता है मैं ब्रेकिंग क्यों कर रही हूँ, एंड देन आई मेड इट। Put your hands up so I know you're hardcore. Breaking, to be honest, बहुत hard है। Breaking कभी खत्म ही नहीं होती, मतलब उसमें सीखते जाओ, उसमें explore करते जाओ, खुद अपना character ढूंढ रहे हो, फिर power moves unlock करने में सालों लग जाते हैं। जितना आप सीखते जाओगे, hard पे जाओगे, उतना आपको injuries के chances है। कोई mat नहीं है, floor पे कर दिया, गिर गए, गर्दन पे लग गई, shoulder dislocate हो गया।

0: But recent, how this federation is also working, like how we got opportunity to go outside, but still they are not giving us the money to go. Like we have to book our own tickets to represent India. Yeah. Like this is so stupid.
1: उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता सही बात बोलूं तो अंकल उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है डांस के बारे में हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं हम लोग के नजर में ओलंपिक रहता है ना तो उसमें लेयर्स भी रहता है ना समझ रहे हो मतलब अगर आपको एक साल में 11 कंट्री जाना है सेल्फ फंडेड आपका मिनिस्ट्री कुछ नहीं है आपका कुछ भी बैकअप नहीं है आपको आपका रेंट भरना है आप कैसे जा सकते हो मतलब आपको क्वालिफायर करना पड़ेगा ना ओलंपिक जाने के लिए सारी चीज अगर मैं सिमिलरली अगर करता था दूसरे कंट्री में 100% में ओलंपियन रहता था Yo, I'm the best b-boy in India. No cap.
2: On the way. Let's go.
1: हम लोग usually ऐसा dream करते कि like international like you know world में enter करना है हम लोग को देखना है वो experience करना है कि और लोग कैसे dance करते हैं लोग तो हम लोग से भी ज़्यादा experienced थे वो लोग highest of high level पे compete करते
3: हम चले गए बाहरों में
4: मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मेरे को एरिया में इज्जत मिले बहुत कुछ मिला है कपड़े पहनने का ढंग पासपोर्ट भर रहा है पैसा कमाना समझ में आ रहा है लोगों से बातचीत कैसे करना है वो ऐसा बहुत सारा चीज मिला मतलब जो भी अभी आज है सब ब्रेकिंग नहीं दिया
5: The Indian scene is just growing and it's stronger than some of the countries I've been to.
6: I thought that the scene was a pretty similar level to the UK.
5: They just need a little bit like of guidance, maybe some ability to travel and they could really do some damage.

0: Power Grind Machine.
1: मेरे पढ़ा लिखा नहीं है, अगर मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं अगर जॉब भी ढूंढूंगा तो मेरे को ऐसे खुद भी मिलेगा डिलीवरी का, वॉचमैन का, यही मिल सकता है, उसके ऊपर नहीं मिलेगा, ठीक है। बट वो 15 साल में मैंने खुद को इतना डेवलप किया ना कि मैं इंडिया को कुछ 15 कंट्री रिप्रेजेंट कर चुका हूँ।
2: इतिहास बन गया है, थर्ड प्लेस।
1: मैं ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट में सिखा चुका हूँ। जो स्टार्ट करेगा उसके ऊपर है, डिपेंड इसके ऊपर करता है कि उसको क्या करना है।
3: पूरा लाइफस्टाइल है ये बेसिकली, और वो स्ट्रीट एम्पावर्ड है। आई डोंट थिंक कि हाई क्लास और लाइक यू नो पीपल कैन ऑल्सो, आई मीन दे कैन डू इट 100%, दे कैन नॉट लीव इट, यू नो दे लैक समथिंग इनसाइड।
4: जो अभी जो हमारा ब्रेकिंग है, अब जो यंग जनरेशन है उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है। 10 साल बाद हम लोग ही ओजीज बन जाएंगे, हम लोग ही उनके लिए हिस्ट्री होंगे। जिनको मैं देखती आ रही थी, मैंने उनके बराबर पहुंची और फिर उनके आगे निकली, तो मैं अपने आप को मानती हूँ ऊपर। मैं चाहती हूँ और बिगर, एटलीस्ट उनके अंदर हंगर होगी इसको हराना यार, ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा जागे, मुझे किसने हराया, अगले साल मैं उसको हराऊंगी। बारहवीं इज लाइक माई ग्रेट कॉम्पिटिशन, क्योंकि हम लोग 4 साल से फाइनल्स में मिल रहे हैं हमेशा।
5: मुझे बारबी अच्छी लगती है, मतलब वो जिस तरह डांस करती है, जिस तरह वो मूव करती है, जिस तरह वो फ्लिप्स वगैरह मारती है, तो बहुत अच्छी लगती है। उनका काफ़ी चीज़ें हैं वो अच्छी लगती है। ऊपर से वो मुंबई से है, तो मुझे मुंबई बहुत पसंद है, मुझे मुंबई जाना है, तो अगर मैं जाऊँगी तो उनसे वहाँ पर ज़रूर मिलूँगी।
4: अभी तो बारबी घर जाके रहे, उसके बाद मैं नहीं, बारबी के घर जाके रहे।

0: TikTok.
1: Oi. क्या हुआ बे? ऐसा क्यों देख रहे? स्टार्टिंग में साइबर कैफे जाते थे तो लिखते थे कि क्रेजी डांस बहुत ज्यादा फैसिनेट करता था मेरे को कि लाइक पीपल आर जस्ट लाइक फ्लाइंग लाइक यू नो इन द एयर दे आर लाइक ट्विस्टिंग एंड टर्निंग एंड लैंडिंग ऑन देयर फीट वीडियो के थ्रू इंट्रोडक्शन हुआ मेरा मैंने सब डॉक्यूमेंट्री में बोला ये चीज वीडियो के थ्रू इंट्रोड्यूस किया
2: हां वीडियो में ही देखता था वो वीडियो में देख देख के ही किया है सब
1: वो रिसर्च किया मैंने बहुत ऐसा कि कहां से आता है लाइक क्या टाइप के लाइक यू नो क्या एनवायरमेंट क्या रहता है बैटल क्या होती है और मैं बहुत प्रैक्टिस करता था ब्रो लिटरली मैं दिन रात एक करता था
2: प्रैक्टिस कॉलेज जाता नहीं था कहां जाता घर से बैग लेके जाता कॉलेज जाता ही नहीं है
1: ब्रो मैं एक एक माले पर चढ़ के बैक फ्लिप मार देता था लिटरली She's never seen me dancing. Only time that she saw me dancing was 2019.
3: This is Red Bull BC One, the most prestigious B-boy, B-girl stage on the planet. You know the flying machine.
1: That was the first time when ever any Indian stepped on the world finals. मेरे लिए भी बहुत अलग प्रेशर था कि भाई मेरी मम्मी देख रही है हाँ इतने सारे लोग
2: सब लोग बोलते थे ना अभी मतलब फ्लाइंग मशीन आ रहेगा अभी तो मैं आजू बाजू में सब बैठ मैं मेरा बेटा है बोला आपका बेटा है मैं बोली हाँ मेरा बेटा है बोले ये जो है ना इधर का स्टार तुम्हारा बेटा है तुम्हारे बेटे की वजह से ये सब हो रहा है
1: मेरे को लगता है कि वो गिफ्टेड था मैं कि वो ब्रेकिंग मेरे को मिला और एक्चुअली मैं ऐसा मीडियम बन गया कि और उसको अलग लेवल पे लेके यार अपने कंट्री में

ग्लिप म्यूजिक कम करो जैसे ग्लिप है वो डिफाइन करता है स्मूथ स्लिपरी मूव्स तो उसमें तीन चार मूव्स हैं तो लाइक पहले मैं उसमें नमस्ते करती हूँ जब मैं इंटरनेशनल जाती हूँ नमस्ते एंड दिस पूरा ये चिल्ला लो जैसे मैं स्लिपरी बताया तो मैंने खुद धक्का देके और घूमना ऐसा कुछ करके देन दीज मूवमेंट्स ये सब जो मेरे वो दिखाता है लाइक ये सब चीज़ें हो गई मुझे यही बताता कि आप हर चीज़ हंसोगे क्योंकि नाम इन्होंने दिया ही चिढ़ा देते मुझे बहुत ज़्यादा हाँ सो हाँ दीज थिंग्स ऑल्सो जो मैं करती हूँ बैटल में मैं अपने आप को मानती हूँ कि दो पर्सन है मेरे अंदर एक सिमरन है और एक ग्लिब है तो ग्लिब के दो मतलब है अगर सिमरन का देखा जाए तो बहुत टॉगेटिव पर्सन जो कि मैं जनरली हूँ और अगर ग्लिप का देखा जाए तो वो मेरे मूव्स डिफाइन करता है स्लिपरी स्लीक बहुत स्मूथ

0: Ochoa goes through the fans.
1: Here you go, Bobby.
2: तेरे अंदर वो इतना हंगर था कि मुझे जीतना है जीतना है यार इस साल जीतना है तो इंजरी तो कुछ नहीं करना है 2023 से आप समझ सकते हो कि मेरी लाइफ चेंज हुई है रेड बुल से क्योंकि मेरे पास एक टैग लग गया कि रेड बुल DC1 विनर है यार ये
3: रेड बुल जीतना था कि इंटरनेशनल जाना था तो रेड बुल ही एक ऑप्शन था अगर वो जीतेंगे तो इंटरनेशनल जा सकते हो ना

पहले तो जब देखा मैंने तो मेरे को पता ही नहीं था ये ब्रेकिंग है, क्योंकि हम लोग तो मतलब स्टंट काउंट करते हैं, एज स्टंट काउंट करते थे वो टाइम पे, वो एरा में जिसको आता था ब्रेकिंग उसका इज्जत करते थे लोग एरिया वाले। इज्जत मतलब अगर वो कोई बर्थडे में जा रहा है तो उसके लिए चेयर्स आ रहे, कोल्ड ड्रिंक्स आ रहा, केक आ रहा, सब ऑटोमेटिक चल के आ रहा है। तो मैं बोला मेरे को भी चाहिए इज्जत भाई, मतलब समझेगा। फिर मैं नेक्स्ट डे जाके उन लोग अप्रोच किया कि मेरे को भी करने का, तो वो लोग ने मार के भगा दिया, नहीं सिखाएंगे बोले। एक सेलिब्रिटी टाइप ऐसा घूम रहा हो, ऐसा कोई रैंडम आगे बोलेगा

मेरे को सिखाएगा क्या एक्टिंग, नहीं हो सकता ना, तो ऐसा भगा दिया मार के। फिर मैं उन लोगों को 2 महीना फॉलो किया दूर से, ऐसा 100 मीटर से ऐसा देख रहता था क्या क्या कर रहे, फिर अपने साइड जाके प्रैक्टिस करता था। एक टाइम पे 150-200 बी बॉय एक एरिया में, और अभी कोई है ही नहीं।

0: तो बस उन लोग के वजह से ही हम लोग को इतना हिप हॉप मालूम पड़ा।
1: मैं उसको बोला कि तूने एक चीज़ बहुत अच्छी बोला रे, मतलब कि वसीम भाई ये लोग बाकी लोग हमारे लिए सेलिब्रिटीज थे, अब भी मैं दूध लेके आया इसके घर पे।
0: टाइम बदलता है भाई।
1: फर्स्ट नॉलेज, उसके बाद में दूसरा कुछ। थोड़ा मजाक मस्ती है, मैं थोड़ी खींच देते हैं मेरी, क्योंकि एज भी हो रही है मेरी। अगर मुझे कुछ नहीं होता है करने से, बोले भाई बस कर दो, हो गया आप। मेरा नाम वसीम है और मैं रॉकफिश शुरू से रिप्रेजेंट करता हूँ, और मेरी उम्र है 43 इयर्स ओल्ड, और मैं वन ऑफ द फर्स्ट बी बॉय में से एक इंडिया में आता हूँ। प्रैक्टिस के लिए हम लोग को बहुत दिक्कत होती थी, मतलब जगह नहीं मिल रही बिल्कुल भी।
2: यहाँ पे हम लोगों ने अपना फ्लोर बनाया था, हम लोगों ने हमारा खुद के पैसे से ये चीज़ बनवाई थी।
1: यहाँ पूरा जो एरिया है ना, ये पूरा फिशर एरिया है। प्रैक्टिस करके घर पे जाते थे, हम लोग की बॉडी से जो स्मेल आती थी फिश की, हर कोई गालियाँ सुनता था घर पर। 2011-12 बहुत अच्छा टाइम था। वो टाइम बहुत ज़्यादा हम लोग की लड़ाइयाँ होती थी आर्टिस्ट लोग से, बीबोस लोग से, बैटल्स के अंदर हम लोग का झगड़ा हो जाता था।
3: नहीं नहीं नहीं नहीं भाई, ये सब नहीं कर सकते भाई, ये सब नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे हिप हॉप के वजह से भाई, हिप हॉप हम लोग ये सब नहीं सिखाता।
4: हो जाता है भाई, सीन रियल हो जाता है, लाइक यू नो बैटल थोड़ा इंटेंस हो जाता है कि यार।
1: एटीट्यूड क्या होता है, सामने वाला इतना डर जाए कि अपनी चीजें भूल जाए, एक एटीट्यूड होता है। नहीं, बाकी मैं ही हूँ खाली यहाँ पे।

0: and you got the mass shaking like what?
1: कपड़ों से तो बहुत वो है इसको रोज जाना
2: क्योंकि हमारा ब्रेकिंग है फैशन के बारे में मम्मी मैंने मम्मी का शादी की ड्रेस को पहना तो मम्मी कितनी खुश होकर देखती रहती है उसको पूरे दिन जितना ब्रेकिंग को नहीं देखती उतना इन सब चीजों को देखती
1: शादी की बरी
2: तो मैं जैसे बता रही हूँ ना मम्मी आज 1 लाख लोग देख ली 1 लाख लोगों ने देख ली क्योंकि इनके लिए 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है 1 लाख लोगों ने वीडियो देखी फिर मैं बोलूँ मम्मी 1 मिलियन हो इतना इतना चला गया उतना चला गया तो मम्मी बहुत खुश होती थी सबसे ज्यादा जो मम्मी ने फेस किया है वो ये कि मेरे को मम्मी को फैमिली से पूरे आसपास के लोगों से बहुत सुनने को मिला है मेरे बारे में ये आपको पक्का आपका नाम डूबेगी कहीं चल जाएगी घर छोड़ देगी
1: मैंने तो बैठना ही छोड़ दिया फिर लोगों को
2: मम्मी रोती थी मेरी बैठ के क्योंकि मम्मी मुझसे तो लड़ नहीं सकती क्योंकि मैं बता देती मम्मी कुछ भी गलत नहीं कर रही और मम्मी रोती थी कि मैं क्या करूं मैं सुन नहीं सकती अपने बच्चों के लिए इतना गंदा ये वो
1: ज्यादा लड़कियां तो करती नहीं लड़के ज्यादा वो है तो सुनने को बहुत मिलता था वो तो लेकिन मैंने सुना सबकी
2: जो लोकल बैटल होती थी उसमें साइफर में ज्यादा लोग होते नहीं थे 4-5 लोग खड़े होते थे तो मम्मी बोलती थी कि 10 लोगों के बीच में नाच के आ गए और पैसा इतना खर्च करके आ गई तो तू बड़ी बड़ी बैटल
1: छोटी छोटी बैटल सब अटेंड करती थी
3: विस्मित जी जी रैप करू HR51 गैंग मेरा नीडी फ्राइडे से फ्रीकी FRIENDS में मैं फीबी लेट मी बी बी हबीबी
4: देयर वर अ लॉट ऑफ जैम्स ऑन स्मॉल स्केल पीपल यूज्ड टू लाइक यू नो साइफर अ लॉट पीपल यूज्ड टू लाइक एक्सचेंज अ लॉट एंड इट वाज वेरी रॉ So breaking के बहुत सारे layers हैं. There is footwork, there is top rock, there is power moves, there is freeze. These are the core things जिसमें बाकी सारी चीज़ fit in होती है.

0: काफी मुझे ऐसा फील हुआ कि कंपटीशन था मेरा और मेरे को काफी भारी मूव करने पड़े। स्टार्टिंग में मेरे को हार्ड लगा था, देन मेरे को पता है मैं कौन हूँ, मुझे पता है मैं ब्रेकिंग क्यों कर रही हूँ, एंड देन आई मेड इट। Put your hands up so I know you're hardcore. Breaking, to be honest, बहुत hard है। Breaking कभी खत्म ही नहीं होती, मतलब उसमें सीखते जाओ, उसमें explore करते जाओ, खुद अपना character ढूंढ रहे हो, फिर power moves unlock करने में सालों लग जाते हैं। जितना आप सीखते जाओगे, hard पे जाओगे, उतना आपको injuries के chances है। कोई मैट नहीं वैट नहीं, फ्लोर पे कर दिया, गिर गए, गर्दन पे लग गई, शोल्डर डिसलोकेट हो गया, कुछ ना कुछ नी इंजरी हो गई।
1: तो बेसिकली पहला मेरा लोअर बैक गया था, फिर उसके बाद शोल्डर टूटा था, फिर मेरा लिगामेंट गया, फिर अभी रिसेंटली वापस कॉलर बोन टूटा है। जहाँ पे प्रैक्टिस प्लेस मिल जाता वहाँ कर लेते, जब ये नेहरू स्टेशन मिला, अगर कोई स्टूडियो ऑफर करेगा उधर भी जाके कर लेंगे, है कि नहीं, अपने को स्टूडियो मिलेगा अपन स्टूडियो चल देंगे।
2: टाका दे, टाका। तो हम लोग बहुत टाइम से बहुत सारे वर्ड यूज करते आ रहे हैं, पर उसका कुछ वैल्यू नहीं है। जैसे बैटल में टाका दे, एकदम अच्छा मूव था, टाका दे। जैसे मैं कुछ चाया वार दे दिया तो टाका ही लगेगा ना उसके। टाका दे, दफन दे।
3: दफन, ओ, बरीड, लाइक, या। भिंगरी चेक हो गई भाई तेरा मूव देख के, मतलब भिंगरी चेक ऐसे, मतलब मेरा सर घूम गया तेरे को देख के ब्रो ऐसा।
4: The reason why I don't have these big moves like some of the giants in India, you know, because I don't train too hard. I just like to have fun on the dance floor, off the dance floor, at practice.
5: Wham! Bam! Oh! Mike. Destroy that mic.
4: It's fun. For me, battles, it's fun.
6: I think it's fun to express yourself in front of an audience. You know, if you're in the moment, the whole vibe changes. Everyone is like paying attention to what you're doing. It's liberating.
7: Ben Man, he really captured the moment. It was very entertaining to watch, and sometimes if you win the crowd, you win the event. You can see in his character, he likes to have a laugh and a good time, and he showed it on the stage.
8: Wild Child was probably expected to win. We know he's really good. I'd never seen Ben Man before. When you're going against someone who probably will win, it can make you be like, I'm just going to give everything.

0: जिस तरह से आप मूव्स को इतना इजीली दिखा देते हो ना कि लोगों का मन कर जाता है सीखने का या करने का। अगर ब्रेकिंग सेट के मैं कुछ भी वो करती हूँ तो मेरे को इतना लव नहीं मिलता जितना मुझे ब्रेकिंग से मिलता है, क्योंकि बाकी इन्फ्लुएंसर्स बहुत हैं, आप देखोगे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स बड़े बड़े हैं, बट आपका डिफरेंट क्या है? तो मेरा ब्रेकिंग है।
1: आई टेक माई ब्रेकिंग इन टू अदर एरियाज, इन टू अदर स्टेजेस एंड प्लेटफॉर्म्स। सो व्हेन आई मॉडल इट्स ईदर जस्ट पोजिंग इन क्लोथ्स और इट्स डांसिंग क्लोथ्स। सो अगेन आई ब्रेक, आई डू ग्राफिटी, आई पेंट shoes and jackets, so I customize for people. I was able to like monetize on that. People place orders and wanted me to paint. So I'll show you some of the stuff that I painted. So that's one of the jackets that I painted, my doodle style. I painted the sleeve of this jacket. At the end, it just depends on how you put yourself out there. I tell everybody, like, don't just break, do something on the side.
2: But this is how this federation is also working, like how we got opportunity to go outside, but still, they are not giving us the money to go. Like, we have to book our own tickets to represent India. Yeah. Like, this is so stupid.
3: Yeah. उन लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सही बात बोलूँ तो। अंकल, उन लोगों को कुछ पता ही नहीं है डांस के बारे में। हम लोग फाइनल प्रोडक्ट देखते हैं। हम लोग के नज़र में ओलंपिक रहता है ना, तो उसमें लेयर्स भी रहता है ना, समझ रहे हो? मतलब अगर आपको एक साल में 11 कंट्री जाना है, सेल्फ फंडेड, आपका मिनिस्ट्री कुछ नहीं है, आपका कुछ भी बैकअप नहीं है, आपको आपका रेंट भरना है, आप कैसे जा सकते हो? मतलब आपको क्वालिफायर करना पड़ेगा ना ओलंपिक जाने के लिए। सारी चीज़ अगर मैं सिमिलरली अगर करता था दूसरे कंट्री में, 100% में ओलंपियन रहता था। आई एम द बेस्ट बी बॉय इन इंडिया, नो कैप।
4: ऑन द वे, लेट्स गो।
3: हम लोग यूजुअली ऐसा ड्रीम करते हैं कि लाइक इंटरनेशनल, लाइक यू नो, वर्ल्ड में एंटर करना है। हम लोग को देखना है, वो एक्सपीरियंस करना है कि और लोग कैसे डांस करते हैं। ये लोग तो हम लोग से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, वो लोग हाईएस्ट ऑफ हाई लेवल पे कंपीट करते।
5: हम चले गए बाहरों में।
6: मैंने स्टार्ट इसलिए किया था कि मेरे को एरिया में इज्जत मिले। बहुत कुछ मिला है, कपड़े पहनने का ढंग, पासपोर्ट भर रहा है, पैसा कमाना समझ में आ रहा है, लोगों से बातचीत कैसे करना है, वो ऐसा बहुत सारा चीज मिला। मतलब जो भी अभी आज है, सब ब्रेकिंग ने दिया।
7: The Indian scene is just growing and it's stronger than some of the countries I've been to.
8: I thought that the scene was a pretty similar level to the UK.
7: They just need a little bit like of guidance, maybe some ability to travel, and they could really do some damage.

0: flying machine. He's very explosive when he breaks, but he takes his time between. The pauses are always clear. Tornado is very real.
1: दिखता है उनके emotions, दिखता है उनके face पे कि वो कितना सब कुछ करके वहाँ पर पहुँचे हैं और उसको बहुत real लगता है.
2: मैं पढ़ा लिखा नहीं है, अगर मैं ये सब नहीं करूँगा, मैं अगर जॉब भी ढूंढूंगा तो मेरे को ऐसे खुद भी मिलेगा डिलीवरी का, वॉचमैन का, यही मिल सकता, उसके ऊपर नहीं मिलेगा. ठीक है, बट वो 15 साल में मैंने खुद को इतना डेवलप किया ना कि मैं इंडिया का कुछ 15 कंट्री रिप्रेजेंट कर चुका हूँ.
3: इतिहास बन गया है 3rd प्लेस.
2: मैं ऑल ओवर इंडिया के सारे स्टेट में सिखा चुका हूँ. जो स्टार्ट करेगा उसके ऊपर है, डिपेंड इसके ऊपर करता है कि उसको क्या करना है.
4: पूरा लाइफस्टाइल है ये बेसिकली, और वो स्ट्रीट एम्पावर्ड है. आई डोंट थिंक कि हाई क्लास और लाइक यू नो पीपल कैन ऑल्सो, आई मीन दे कैन डू इट 100%, दे कैन नॉट लीव इट, यू नो दे लैक समथिंग इनसाइड.
1: जो अभी जो हमारा ब्रेकिंग है, अब जो यंग जनरेशन है उनको बहुत अट्रैक्टिव लगता है. 10 साल बाद हम लोग ही ओजीज बन जाएंगे, हम लोग ही उनके लिए हिस्ट्री होंगे. जिनको मैं देखती आ रही थी, मैंने

0: तो मैं अपने आप को मानती हूँ ऊपर, मैं चाहती हूँ और भी बिगर एटलीस्ट उनके अंदर हंगर होगी इसको हराना यार, ताकि मेरे अंदर भी थोड़ा सा जागे, मुझे किसने हराया अगले साल मैं उसको हराऊंगी। बारबी इज लाइक माई ग्रेट कॉम्पिटिशन, क्योंकि हम लोग चार साल से फाइनल्स में मिल रहे हैं हमेशा।
1: मुझे बारबी अच्छी लगती है, मतलब वो जिस तरह डांस करती है, जिस तरह वो मूव करती है, जिस तरह वो फ्लिप्स वगैरह मारती है, तो बहुत अच्छी लगती है उनका, काफ़ी चीज़ें हैं वो अच्छी लगती है। ऊपर से वो मुंबई से है, तो मुझे मुंबई बहुत पसंद है, मुझे मुंबई जाना है, तो अगर मैं जाऊँगी तो उनसे वहाँ पर ज़रूर मिलूँगी।
0: अभी तो बारबी के घर जाके रहे, उसके बाद नहीं बारबी के घर जाके रहे।
2: Glib is like, I don't need to run, I can walk. You can see the difference with her and Barbie. Barbie's like very powerful and very fresh and new. This is BC One India. The stakes are high here. But sometimes you just need to take a deep breath and just relax and just be in the moment.
3: Bro, this is my peace. Like, you know, where I'm at the most peace. You know, this was the first Red Bull BC One India trophy, 2015. I started off watching Red Bull BC One, right? So वो time पे I was like, अगर ये इंडिया में होएगा कभी भी तो मैं ही विनर होगा ये, लाइक आई मैनिफेस्टेड इट एंड दिस इज माई रियलिटी, लाइक एवरेज किड फ्रॉम जोगेश्वरी ईस्ट टू समबडी।
0: फ्लाइंग मशीन मेरे लिए एक चैंपियन है।
4: 12 के 12 महीने फॉर्म में रहता है,
5: उसका ट्रेनिंग, उसका सिस्टम बहुत अलग है।